हो रेडियो नेपालको नेपाल भाषा या समाचार लसकुश जी रुबी श्रेष्ठ आनेना दिशा जी रुबी पाखे नेपाल भाषा या समाचार राष्ट्रिय सभा बर्खाया हाठ्या जेङ्केको नीति सरकार नपाए ब्याके माग विशेषण ध्यान कोसा लिएको प्रस्ताव सकल जना स्वीकृति लल्हागुदु मिग सङ्घ सभा बैठक सांसद कमला पन्त हवयादिको ध्यान आकर्षण प्रस्ताव या त सर्वसम्मत स्वीकृति ल लागु ख थो प्रस्ताव तिथि संसद पिसन थ थगु नुग ख पङ्कादि गु न्यास गृह मन्त्री सुदन गुरुङ ब्यादिगु ख मन्त्री गुरुङ हाछ्या व बर्खा बिगु सास्ती तापा के गु प्रति कार्य योजना 2083 या त छेलेगु जल तथा मौसम विज्ञान विभाग वैगु सूचना या त लिधंसा दिएका मन्त्रालय केन्द्र निशी जिल्ला तक्क मागु ज्यायाना वयाचनागु थया दिल अध्ययना राष्ट्रिय सभा मिगा बैठक कृषि वन तथा पर्यावरण मन्त्री गीता चौधरी संक्रामक पशु लुए नियन्त्रण विधेयक 2083 दुतबिया दिगु दु विधेयक दुतबिया दिसे मन्त्री चौधरी महामारीसँग जुइगु क्षति मयायता पशु व पशुजन्य पदार्थ या व्यापार प्रवर्धन यायता व पशु संक्रामक लुए नियन्त्रण यायता कानुन मागुले विधेयक दुतबियागु थ्वाथिका दिल गृहमन्त्री सुदन गुरुङ देशे शान्ति सुरक्षा काम या त सरकार क्रियाशील जुयासोनागु धया दिगुदु राष्ट्रिय सभा मेगा बैठक सांसद विष्णु बहादुर विश्वकर्मा नेना दिगु नेसालिस मन्त्री गुरुङ देशे जुयासोङ्गो हत्या हिंसा बलात्कार नापाया झाका तेगु विशेष झोलीको अनुसन्धान जुयासोङ्गो धया दिल मन्त्री गुरुङ लजगा मधुगुली व गरिबिया हुने यामतेकी उपयासोङ्गो यो निराशा आत्मा दाह व आत्महत्या ठ्याजाको विशेष सोङ तया सरकार दुई समन्वय ज्यायागु ज्याधल देखागु धया दिल अध्ययना बैठक सांसद मदन कुमारी शाह गरिमा नेनादिगु नेसाली सबिया देश महिला बाल बालिका लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक व सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गीता वादी सार्वजनिक यातायात जुइगु लैङ्गिक हिंसा म यायगु नीति प्रविधि संलिधनसकाको सुरक्षा प्रणाली या त अञ्जलिचो लाका निहजाके मागु धया दिल मन्त्री वादी सार्वजनिक यातायात मिसा त्यसमा फयावया चौङ्गु यौनजन्य हाठ्या असुरक्षा भिडभाड वैगु वनिगु नापाया व्यवहारिक हाठ्या या त कघात सरकार मिसा तेता ध्यान तया ब्लू बस न्याकेता सनागु धया दिल थोयानी राष्ट्रिय सभा मिगया बैठक सांसद तेसन निथा छेलाबुला जुइगु ज्वल ग्यास मुह वाहकुगु बजार नियन्त्रण स्वास्थ्य बिमा लिचो लाकेता लिचो लागे मफुगु लिता सरकार या ध्यान कोसाला दिगु खसा सांसद तेसन स्वास्थ्य बिमा जनता या जीवन नपासुवागु विषय जुगुली थथ्य छेलाबुला या त सरकार या ध्यान कोसाला दिगु ख सांसद तेसन तिथि जिल्ला तेके बन्देल किसान तेसन चौती बाङ्क पिगु बाली छचा दुनेहे नास या गुली थुकिया त क्षतिपूर्ति हो दिक्केको कुतया त सरकार या ध्यान कोसला दिगु दुसा राष्ट्रिय सभा या बैठक थाउन हिने छ त अहिले चुनिगु घोषा दु सर्वोच्च अदालत नेपाली कङ्ग्रेस आधिकारिकता कचौँ नापाया मुद्दा या त पुनरावलोकन या त अनुमति ललहागुदु कङ्ग्रेस विशेष महाधिवेशन पक्षधर या त आधिकारिकता ललहा त सर्वोच्च अदालत याहे आदेश यता पुनरावलोकन यायता माग यासे दायर निवेदन दति प्रधान न्यायाधीश डाक्टर मनोज कुमार शर्मा नित्यानन्द पाण्डे व श्रीकान्त पौडेल पूर्ण इजालस मिग सुनवाई यासे पुनरावलोकन या नीति अनुमति ललहागु ख सर्वोच्च पुनरावलोकन नीति अनुमति बिउ पूर्व सभापति शेरबहादुर देवाय रिट खारेज याइगु यागु सर्वोच्च नेपाङको आदेश जति हान सुनवाई जुइगु जुगुदु थोयान्य न्यायाधीश सारङ्गा सुवेदी निरपद धोष निरौलाय मङ्का जलस वङ्गु वैशाख 4 गते विशेष महाधिवेशन छ निर्वाचित सभापति गगन थापा नेतृत्व कार्य समिति या त मान्यता ल लासे पूर्व सभापति देउवा पक्ष रिट खारेज याना बिगु ख परराष्ट्र मन्त्रालय थिति प्रयोजने विदेशी वनिपी नेपामिते गु भो प्रमाणीकरण या त कन्सुलर प्रमाणीकरण अनलाइन आवेदन प्रणाली या भदौ 1 गते निसेन्याके ट्याङ्गुदु परराष्ट्र मन्त्रालय या कन्सुलर सेवा विभाग पाखे लल हाना वया चङ्गु भो प्रमाणीकरण सेवा या त भदौ 1 गते निसे छिलिगु याना अनलाइन सेवा या कथ न्याकेगु ज्या यानागु मन्त्रालय मिग गोसागुगु पत्रकार सम्मेलन छ जानकारी बिगु ख परराष्ट्र मन्त्री शिशिर खनाल अनलाइन प्रणाली या उले जयना दिसे पिने चङ्गु देशे वनिपिन लाखौं नेपामी पिन्छ म
मटे मटेगु प्रमाणी थगु भो प्रमाणीकरण या त यको तापाक ये वने मागु व आर्थिक फाला अप जुइगु लिता ध्याने तसे मन्त्रालय अफैगु प्रविधि व सेवाग्रही मैत्री सेवा न्याके तेनागु जानकारी बिया दिला दपति क छगु लाख उप नेपामी विद्यार्थी विदेशे आख बुनेता वनी गु दक्षी पेङ्गु लाख नेपामी तेसा वैदेशिक लजगाया नीति अनुमति कया चोङ्गु मन्त्रालय धागुदु प्रतिनिधि सभा बैठक थौ चुने तेङ्गु दुन हिने चताइले सिंह दरबारे चुनेगु बैठके पेङ्गु विधेयक हे वैगु ज्याधल दुसा बैठके राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति सभापति हरि ढकाला नेपाल विशेष सेवा ऐन 2042 साबिका व्यवस्था माकिगु विधेयक नापाया समिति प्रतिवेदन 2083 दुत बिगु ज्याधल दुगु संसद सचिवालय धागु दुसा अथियाना प्रधानमन्त्री वालेन्द्र सहाय थासा कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोभिता गौतम संवैधानिक निकाय पदाधिकारी या पारिश्रमिक सेवा श्रत व सुविधा नापाया नापाङको संशोधन विधेयक 2083 प्रस्ताव न्यवे टेङ्गु दुसा अथियाना उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री गौरी कुमारी खानी तथा खनिज पदार्थ विधेयक 2083 सदने न्यवे टेङ्गु दु महिला बालबालिका लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकको सामाजिक सुरक्षा मन्त्री सीता बादे मानव बेचबिखन व ओसार पसार नियन्त्रण नापाङको संशोधन विधेयक 2083 बैठक न्यवे टेङ्गु दुसा परराष्ट्र मन्त्री सुशील खनाल राहदानी नापाङ्गु संशोधन विधेयक 2083 न्यवैगु ज्याधल दुगु संघीय संसद सचिवालय महासचिव पद्म प्रसाद पाण्डे जानकारी व्यादिगु ख सूचना तथा संचार मन्त्रालय राष्ट्रिय आम संचार विधेयक अवधारणा पत्र सार्वजनिक यागुदु मन्त्रालय हेनाचङको आर्थिक धुने आ छेलाबुल्या दुगु छापाखाना व प्रकाशन नापाए एन 2048 राष्ट्रिय प्रसारण एन 2049 व श्रमजीवी पत्रकार नापाया एन 2051 या त प्रतिस्थापन यासे छगुए कुसा कानुन देखेगु या नाथो विधेयक संसदले दर्ता यागु आज नापा मागु ज्याजुया चङ्गु धागुदु सार्वजनिक यागु अवधारणा पौष संविधान सुनिश्चित यागु विचार व नोचु या स्वतन्त्रता संचार या हक व सूचना हक या त लिचो लाकीको कथन छेलाबुला यासे सूचना प्रविधि या त अपल विकास डिजिटल व अनलाइन संचार माध्यम या त तब्याकेगु व प्रसारण लागाया विविधीकरण या त कघाता नुगु एकीकृत कानून मागु नेथङ्गु दु विधेयक तर्जुमाया झोले स्वापु दुगु मन्त्रालय छेले त कानुन मागु मन्त्रालय धागु दुसा विधेयक तर्जुमाया झोले स्वापुदुगु मन्त्रालय सरकारी निकाय व स्वापुतैगु संस्था व मनु तेसा मागु राय सुझाव परामर्श क्यादैगु न मन्त्रालय या थापुदु स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्री निशा मेहता सरकारी मिखा अस्पताल सञ्चालन या त सनागु धयादिगुदु प्रतिनिधि सभा कथया शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति या मिग चोङ्गु बैठके स्वास्थ्य मन्त्री मेहता सरकार थुगुसी कोशी प्रदेश थगुए मिखा अस्पताल झ्याके तसनागु जानकारी ब्यादिगु ख बैठके सांसद तेसा गरीब मनुतेगु नीति अस्पताल तेसा फ्याना तगु लासा खाली मधु धकलिता छोया चुङ्गु व ढेवा मायाक ललहागु गुई च्यागु कथया वास अफैगु कथा ल मलागु दासे ठुजागु अस्पताल व फार्मेसी त्यता थत्य कारवाही या त सरकारी अध्ययन कोशाला दिगु दुसा सांसद तेसा मानव अङ्ग प्रत्यारोपण हात्या जुया चोङ्गु तापागु अस्पताल तेके विशेषज्ञ डाक्टर मधुगु हुनी मनु तेसा वासया मखाना अकाले सिनाचुने मागु व स्वास्थ्य हात्या हुने हिँ हिँ मानसिक हात्या उपया चोङ्गु नेगु प्रदेश मानसिक अस्पताल पलिस्ता या त सरकारी यता सुजनापा ब्यादिगुदु भूमि व्यवस्था सहकारी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय देनियङ्कया भूमि प्रशासन कार्यालय तेके छेलीगु सेवा नापाया लिखित फारम या त अफैगु कथा लल हाइगु समिति निसोङ्गुदु भूमि व्यवस्था सहकारी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय मतदाता ना धल मुङ्कीगु नीति मागु ग्वाली या त स्थानीय तह या त इनाप्यागुदु मन्त्रालय बुधबार फुक गाउँपालिका व नगरपालिका या त पौछोसे प्रदेश व जिल्ला निर्वाचन कार्यालय या त मतदाता ना धल मुङ्के ता
मागु ग्वाली समन्वय व सहजीकरण यायता इनाफिया गुख निर्वाचन आयोग या थे साउन 15 गतिया बैठक मतदाता नाधल अध्यावधिक यागु उक्या नीति वडा स्तर तक्कै मागु ज्याचो न्याकेगु कोचीगु ख प्रमुख निर्वाचन आयुक्त मानबहादुर कार्की मतदाता नाधल अध्यावधिक अभियान न्याकेगु विशेष सामिक प्रदेश निर्वाचन अधिकारी व जिल्ला निर्वाचन अधिकारी पिनापा सलव्याका दिगु ख स्थानीय पञ्जीका अधिकारी नापा समन्वय याना इहिपा बसाई सराई व सिंह मतदाता धल मतदाता ना धल नापा जाँचे याना अध्यावलिक आयोगु आयोग धागुदु ये सुनि गया यातायात संरचना दीर्घकालीन परिवर्तन हैगु याना गुरु योजना देखा सङ्गुदु गुरु योजना महाराजगंज व चाभली गौशाला भूमिगत मार्ग चाभली बागमती व त्रिपुरेश्वर माइती घरे आकाशेता विष्णुमती खुशी तटीय मार्ग साधो बाटो गोदावरी स्वाइगु कर्मनसाता तब्यागु चक्रफत थापाथली त्रिपुरेश्वर लागाता देखेगु व बागमती खुसिया सिटे कोरिडोर यता तब्याकिगु व बौद्ध मार्ग सडक चोक भिङ्केगु योजना यता दुथ्या कगु दु पूर्वाधार विकास मन्त्रालय समेत जोकते देखगु गुरु योजना सोनिगया मुख्य जामजीगु लागा अन्डरपास भूमिगत सुरुङ आकाशे सडक व तधङ्गु बस एकीकृत सञ्चालन पाके ट्राफिक हाठ्या दीर्घकालीन कथन हङ्किगु आजुका गुदु यले मिग गोसागोगु गुरु योजना सार्वजनिक च्याझोले राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य अर्जुन जङ थापाङ गुरु योजना कार्यान्वयन वे धुङ्कानी सोनिगले आखने दया चङ्कु यातायात ट्राफिकको सडक नापाया हाठ्या जेनेगु नेथना दिल अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग रुकुम पश्चिमी 8-20 कोट नगरपालिका नगर प्रमुख रवि केसी नापा चिन्छमा विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर यागुदु आर्थिक दा 2076-77 सहकारी संस्था छनौट कार्यविधि अख योग्यता हे मगागु 8-20 कोट दुग्ध सहकारी संस्था लिमिटेड यता चिस्यान केन्द्र देखेगु नीति अनुदान जेवा लल हागु व ठो संस्था नीति 8-20 कोट नगरपालिका गाडी न्याबले भ्रष्टाचार यागु दोपसा नगर प्रमुख केसी नापा चिन्छमा विरुद्ध मिग विशेष अदालत यहाँ समुदाय दायर यानागु आयोगका प्रवक्ता सुरेश न्यौपाने पिथना दिगु विज्ञप्ति सन्थना तगु ख राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड मिग कक्षा 12 मौका परीक्षा परीक्षाफल पिथङ्गुदु बोर्ड कथा परीक्षा ने छदो सोस व झिमा परीक्षार्थी पिन्स बोती कागु ख व मध्ये विशेष ग्रेड प्राप्त काइपी परीक्षार्थी ते गुलिया ने नेदो च्यासो व गुई नेमा दुसा थो चे छगु फुटी झिङ्गुगु प्रतिशत बराबर ख अथेयाना परीक्षार्थी तेगु परीक्षाफल रद्द यागुदु लिचो प्राविधिक हुने छुन त्रुटि दुसा परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय मु अभिलेख भिङ्केगुना नेथना तगुदु परीक्षा बोर्ड या वेबसाइट एसएमएस ओ आइभीआर सर्भिस वेत फै बोर्ड अन्थे साउन 2 वा 3 गते मौका परीक्षा न्याकगु ख विश्व शान्ति व आर्थिक समृद्धि नीति ढिसी लागु शान्ति नि सशस्त्रीकरण व विकास आवश्यकता के बबिगुदु चे छकगु हिरोसीमा दिवस व नेपाल जापान कूटनीतिक स्वापु पलिस्ता जुगु नेकगु दमु ज्याय लसता मिग ये गोसागु ज्याचले वक्ता पिसम विश्व जुयासङ्गु भू राजनैतिक हाठ्या लुवापु आणविक शक्ति राष्ट्र त दथुया लुवापु मानव सभ्यता याता हान जोकि मेलाके फैगु दासे दुख पङ्कगुदु सन् 1945 अगस्त 6 या दिन जापान हिरोसीमा सहरे कोफागु आणविक बमबारी मानवीय भौतिक वातावरणीय क्षति जुगु ख आदेश पिनिया बुख अमेरिकी राष्ट्र डोनाल्ड ट्रम्प इरान नापा याका तगु युद्ध याक्न हङ्किगु ध्याया दिगुदु ऊर्जा मूल्य नापाया पत्रकार तेगु नेसाली सबिया दिस राष्ट्रपति ट्रम्प इरान आयागु अवस्था यिकु ताइतक हाट्या फया चोने मफुगु दासन याक्न लफुन हङ्किगु ध्याया दिल अमेरिका इरान व ओमान हर्मु जलमार्ग याकेगु आज नापा अस्थायी सहमति लिक्क ठेङ्केगु ठेङ्कगु अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यम तेसन धागुदु सहमति जुसा मध्य पूर्व याता यिकु संवेदनशील लगायता हाठ्या म जुइगु विश्व ऊर्जा आपूर्ति छु राहा ठेनीगु बलसा कागुदु पेट्रोलियम पदार्थ ढुवानिया समुद्री मार्ग स्टेट अफ होर्मुज याता कया ओमान व इरान दति सम्झौता जुगुदु इरानी विदेश मन्त्रालय प्रवक्ता सम्झौता लाचिन तेगु लिपाङ्गु थासे ठेङ्गु पुष्टि याना दिगु दुसाना आपाल
ख दशाको नामदी प्रवक्ता इस्माइल सम्झौता हुर्मुस ओमान याना वयाचुङ्गु ढुवानिया सुरक्षा ग्यारेन्टी मयागु थत्विका दिगु दुत होलागा सुरक्षा अमेरिका छेला तगुनाका बन्दी नापाय लिचो लाना चोङ्गु व थपिस सुरक्षा सुनिच या मुफिगु वेकल धया दिल अमेरिका व इजरायल इरानी आक्रमण या धुङ्कानी इरान हलिया हे महतन जागु चिकन ढुवानी मार्ग हुर्मुजे पङ्गथना वयाचुङ्गु दु आ मौसम जानकारी थौन्धे हिमालय पहाडी लगाया छुन तासे भतिचा तस्कन वा वैगु चफु कुहा वैगु सम्भावना दु तराई लगाया मुह थासे भतिचा वा वैगु सम्भावना दुगु जल तथा मौसम विज्ञान विभाग या धापु दुसा वङ्गु नि पे गौ ये सोनिक या क्वाज नि गुगु डिग्री सेल्सियस जति लुया वगु ख थौन हिने ये सोनिक या क्वाज नि च्यागु निसे सुइगु डिग्री सेल्सियस जति चोनिक डुकुमा दु थौ सोनिकले सुथेसिया याता इ जुया नि सोङगु मिनेटे लुया वगु सूर्य शनि ल खुता इजुया निएक निए पेङ्गु मिनेटे बी रेडियो नेपाल नेपाल भाषा समाचार पुन चिताइले नेपाली भाषा समाचार नेना दिस शुभ

आज रेडियो नेपाल हिन्न तामाङ सानगिरी रङ्नी दा ढेनमुला ङ इन्दिरा थिङ प्रतिनिधि सभाला तिनीला चिसाङ्री सांसद कादेचे युल्ला लहनन ग्लारी ताबा सवारी दुर्घटना प्राकृतिक विपत्ति रङबा ताम्ला छ्याम्री लहनन समसामयिक ताम्री सरकार ला ध्यान छेङना लस्युबा मुला सांसद कादेचे इलामला छ्याम स्यान्दो पहाडी झोङ कादेरी प्राकृतिक विपत्ति से नाका भन्दी रङबान अवस्था ठुङना लाबा ताम्री सरकार ला ध्यान छेङना लाबा मुला चुराङलासिन सांसद कादेसे बोन म्यारो ग्याम आखाम्बा ताबा मिनी लिछा मान लाबारी आखाम्ना सुनकोसी गान्धीरी फालफुङसी रेम्बाथेन मृङ शिवा घटना ला ताम्री माइसी पिनबारी सरकारला ध्यान छेङना लाबामुला सांसद कादेसे वारा बुरी युवा सार कान शोभा ग्यास राङबा रेदाङसे पभोग लाबा से बाबारी बजारी कृत्रिम अभाव तबारी आपिन्ना बजार अनुगमन लाबारी तराई झोङकादेरी पोखरी से ठुवाबाला सजिलोसेन मान लाबारी पिनबारी सरकारला ध्यान छेङना लाबामुला चुबीमा गाछा तिनीनोन विपक्षी दलला सांसद कादेसे काइब्लोन बालेन्द्र शाहला ताम्दा सच्याई धिदो

0: मुबा माग लाबान रेसी विरोध लाबा मुबा सुङबोन डोलप्रसाद अर्याल चे दुई पिनबाल इचा नेपाली काङ्ग्रेसला सांसद चन्द्रमोहन यादव से काइब्लोन बालेन्द्र शाहसे मुर्ला ताम्री पाङबा ताम सच्याव लबारी माग लाबान जनकपुरला ढल्के बर्री सोबान मुबा ट्रमा सेन्टर सरकार से आर्कुन ग्लारी लेबारी माइबा ताम्री सरकारला जवाफ रिबारी विरोध लाबा मुबा थे लिचा सुङबोन अरियाल से रेमरेम राङला ग्लारी टिबारी मोइजेन लामानोन सांसद यादव से विरोध लासिन टिबासे सरकार दा रुलिङ लास्युबा मुबा चुराङ लासिन सांसद कृपा राम राणा युवराज धुलाल ध्रुव राज राई थेन खुसबु ओली सेनोन काइब्लोन ला ताम सच्याव लाबारी माग लाबा मुबा चुराङ लासिन सांसद कादेशे ग्यागर मधेश्री हिन्दू थेन मुस्लिम ला घुङरी ताबा धन्दोदा थुम्ना लाबारी जिम्मेवार तादोबा लानन घ्लारी सडक घ्यालम कादे नोङबा ताम्रिन सरकारला ध्यान छेङना लाबा मुबा उद्योग छोङथेन आपूर्ति ब्लोन गौरी कुमारी यादव से कान शोभा ग्यासला माग लेना लाबा थेन आपूर्ति घुङरी ढिक्ना लाबारी ब्लोनखाङ से भङ लाबान मुला बिसी सुङबा मुला प्रतिनिधि सभाला तिनीला चिसाङरी सांसद कादेशे तेबा प्रश्नला जवाफ पिन्छुबान ब्लोन यादव से ग्यासला अभाव तबारी आपिनबादा सहजीकरण थेन बजार अनुगमनला गे लाबान मुला बिसी सुङबा मुबा ब्लोन यादव से लुसीला ताम कादे थेसी तोबा बिमा लाना ग्यास आग्लुबारी सुङबा मुला सरकार से दिङे दाङसे लेबन खाबा विद्युत आपूर्तिला माग्दा च्यासी छार ट्रान्समिसन लाइन शोभा ठिम शोभा मुला प्रतिनिधि सभाला पूर्वाधार विकास समितिला तिनी टिबाची साङ्री ऊर्जा किन्योथेन सिँचाइ ब्लोन विराज भक्त श्रेष्ठ से 2042 साल हेन्से रेदाङसे चुइङा प्रतिशत बिजुली माग लाबन खाबा मुसाइनोन पुरान ट्रान्समिसन मुबासे पिनबारी खाम्सी टिबा आरएबिसी सुङबा मुबा सरकार से पुरान विद्युत पूर्वाधार च्यासी गोसी ट्रान्समिसन लाइन सोबारी प्राथमिकता पिन्सेदा मुलाबिसी सुङबान ब्लोन श्रेष्ठ से चुपाल्से नोङबा थेन सोबारी भाँकी मुबा विद्युत आयोजना सोबान मुबा से सरकार से छार विद्युत आयोजना आसेङबा ठिम सोबान मुलाबिसी सुङबा मुबा बिजुलीला लाइन दोबारी आखाम्बा नि प्रतिशत ग्ला कर्णाली थेन सुदूर नुप्ला तिलाई झोङकादेरी वैकल्पिक ऊर्जा धोना लाबारी सरकार से योजना शोभा मुलाबिसी ब्लोन श्रेष्ठ से सुङबा मुबा सांसद कादेशे धाते धोनानोन कर्णालीला जुम्ला थेन मुगुला युल्बासे बिजुली मराङबारी आम्याङबासे युल्ला बेनान ग्लारी विद्युत सेवा धोना लाबारी सरकारला ध्यान छेङ्न लाबा मुबा रोङसा ब्लोन शिशिर खनालसे युल्ला रोङसा नीतिला केन्द्री नोर कुटनीतिक ताला बिसी सुङबा मुला तिनी ललितपुरी सेङबा ह्वाल्डी ब्लोन खनालसे चुताम सुङबा हिन्ला रोङसा ब्लोन ला लोनखाङसे पाङबा अनुसार चिन थेन लो एसिया घुङरी नोर छोङथेन ब्रेल्बा लेना लाबारी नेपालसे चामला घे लाबारी खामला सुङबान रोङसा ब्लोन खनालसे राङला निनोन ङेङ्गोर ह्युल्थेन सार्वभौम च्योच्यो राङ राङ्री डेन राङ राङ नाङ्री च्योच्यो ब्रेल्बाथेन गिक्से गिक्दा युल्दा डेन लाबारी नेपाल संवेदनशील मुलाबिसी सुङबा मुला चिन्थेन भारतला नोर रोसे नेपाल छ्याम ङेङ्गोर ह्युल्दा छोङ लेना लाबान पर्यटन लेना लाबाथेन नोर विकास री छार अफसर पिनबा मुलाबिसी ब्लोन खनालसे सुङबा मुला सानम बोन कादे से राङथेन थुइबा समस्या सानम उत्पादनला बजार व्यवस्थापन रासायनिक सारला आपूर्ति थेन वितरण सानम पूर्वाधार निर्माण राङबा ताम्री काठुई लाबा मुला सानम रिथेन पूर्वाधार ब्लोन खाङरी ताबा काठुई सूचना थेन संचार ब्लोन डाक्टर विक्रम तिमिल सिन्हा सानम ब्लोन गीता चौधरी थेन उद्योग छोङथेन आपूर्ति ब्लोन गौरी कुमारीला छ्याम सांसद थेन सानम बोन कादेला मुल्मी कादेशे पोकिन बामुबा काठुरी पोकिन बाकादेशे नुवाकोट धादिङ थेन काभ्रे पलानचोक ला सनम थेन सरोकार थानबाकादेशे नासी खाबा समस्या थान्छ्युबा मुबा नुवाकोट थुम नम्बर घिक्री प्रतिनिधि सभा सदस्य थेन संचार ब्लोन डाक्टर तिमिल सिनासे चुनावला धुइरी सनम बोन कादे थेन चाबा घ्रान्दा डान्छ्युबान दाते सरकार से चुनन अनुसारला घे लाबान मुलाबिसी सुङबा मुबा उद्योग छोङथेन आपूर्ति ब्लोन गौरी कुमारी थेन सनम रिथेन पर्यावरण कारण ब्लोन गीता चौधरी से सनम बोन कदेला समस्या थुमना लबारी सरकार से ग्रेन प्राथमिकतारी थान्सी गे लबान मुलाबिसी सुंगबा मुबा सार्वजनिक सेवा प्रसारण पीएसबी नेपाल दाछार नियुक्ति ताबा गे तेनबा चोहो उर्वशी बस्न्या से तिनी राङला धान किन्स्युबा मुला पीएसबी नेपालला गेदिम रेडियो नेपाली चोहो बस्न्यादा पीएसबी नेपाल सञ्चालक समितिला मुल्मी सोभिता रिसाल कायम मुकायम ग्रेन प्रशासकीय अधिकृत आरती चटौतला छ्याम कर्मचारीका देशे झेन लाबा मुबा राङला धान किन्स्युबा लिचा गे तेनबा चोहो बस्न्या से सार्वजनिक सेवा प्रसारण नेपाली सुशासन थेन पारदर्शिता सोबारी युल्बा दा तोबा गेखोर कादे पिनबारी बङ लातोला बिसी सुङबा मुबा चुराङ लासिन गेतेन बा चोहो बस्न्याचे सार्वजनिक सेवा प्रसारण रेडियो नेपाल थेन नेपाल टेलिभिजन ला सानगिर थेन गेखोर्दा ज्याबा सोसी प्रविधि मैत्री सोबारी बङ लासेदा मुला बिसी सुङबा मुबा युल्बाङ सूचना आयोग रे ग्रेन सूचना आयुक्त थेन मेन्दो नि सूचना आयुक्त रि दरखास्त रिबा मुला युल्बाङ सूचना आयोगला धान पोकादे नियुक्ति सिफारिस समितिला लोनखाङ से तिनी कागुर छिपान मेन्दो निरी च्याङनारी मेन्दो गिक झामेकोला थान बालासी नियुक्ति लाबारी निवेदन रिबा मुला योग्यता छोबा सेम मुबा नेपाली मिनी कादेसे चु निचुई भ्रेला कुनो गेजाङला धुरी राङला विवरण सिभी थेन योग्यताला प्रमाण पत्र प्रति लिपि राङबा कागजका देला छ्याम निवेदन पिन दोसेदा मुला निवेदन पिनबा कादेसे त्रिपुरेश्वरला याम्बुला राष्ट्रिय सूचना केन्द्रला गेजाङरी निसी वा आयोगला इमेल info@nic.gov.np ग्याम निवेदन पिनबारी खाम्सेदा मुला चुनुन ताम्री स्यान्दो जानकारी किनबारी सेम मुसाम आयोगला आधिकारिक वेबसाइट www.nic.gov.np च्याबारी खाम्सेदा मुला नागढुङ्गा सिस्ने खोला सुरुङ ग्यालाम सेङ्बा लिचा ह्युल औपचारिक रूपलिन आधुनिक थेन व्यावसायिक सुरुङ ला ग्यालाम ला युग्री वाङबा मुला चुबीमा दाते ह्युल्डी गोरब्रे सुरुङ ग्यालाम सोबागे ताबान मुला बिसामा गोर निचुई सोम सुरुङ मार्ग च्याबा गोबा लाबान मुला चुनोर डिङ्री प्रस्ताव ताबा सुरुङ ग्यालामला च्याबा गोबारी डुचुई निस्करोड ला गिक टाङ्गा नुन फेबा मुला सिद्धार्थ राजमार्गरी सोबान लाबा सिद्ध बाबा सुरुङ ग्यालाम थेन याम्बु तराई मधेस द्रुत मार्ग आयोजनारी गोर निस छ्याम दाते ह्युल्डी गोर ब्रे सुरुङ ग्यालाम सोबान मुलाबिसी सडक विभागला गुणस्तर अनुसन्धान थेन विकास केन्द्र से पाङबा मुला राष्ट्रिय सभाला तिनीला चिसाङ स्थगित ताबा मुला दोषी आर्को चिसाङ चु साउन निचुई निस्ला कुनु दिनीला घिक न्यासी चुइघा मिनेट्री चिबा तामुला संसद लोनखाङ से पाङबा अनुसार सभाला चोहो नारायण प्रसाद दाहाल से राष्ट्रिय सभा निमावली 2075 नियम डुला उपनियम सोम अनुसार साउन निचुई निस्ला कुनु बुधबार चिबा लासी दुई तोक लासियोबा मुला करदाता प्रोत्साहन उपहार री ढाबा कादे घोषणा लाबा मुला आन्तरिक राजस्व विभाग से तिबा चुगे खोरी गिक्छा रेम तिनी नोर्ब्लोन खाङरी सेङबा गेखोरी नोर्ब्लोन डाक्टर स्वर्णिम वाग्ले से मेन्दो चुइङा विजेता थेन मेन्दो गिक बम्पर उपहार विजेता धाम्बा मुला विभाग से पाङबा अनुसार बम्पर उपहार गेखोरी लाख चुई मेन्दो गिक दा परप ताबा मुला चु उपहार ढाबा मिनिसे शिव कृष्ण जनरल स्टोर ग्याम ग्यार्जा निसे सिका घाँचुइला सामान ग्लुसी गेखोर्दी पो किनबा मुबा करदाता प्रोत्साहन उपहार गेखोर्ला युङथान लासिमान नोर्ब्लोन वाग्लेसे करदाता प्रोत्साहन उपहार गेखोर्दी बिल किनबा पिनबा ठिमला विकास लाबान औपचारिक नोर ठिम लेना लाबारी रो ताला बिसी सुङबा मुला रुकुम नुप्ला 8-20 कोट नगरपालिकाला नगर ग्रेनपो रवि केसीला छ्याम मेन्दो चुई घिक विरुद्ध भ्रष्टाचारला मुद्दा पिनबा मुला अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगला सुङबोन सुरेश नेउपानेसे सुङबा अनुसार नोर्दिङ 2076-77 सरकारी सहकारी गेन्दुन दाम्बा गे विदिदा नाङ्सी योग्यतान आछ्योबा 8-20 कोट नगरपालिका ने सहकारी गेन्दुन लिमिटेड दा चिस्यान केन्द्र सोबारी अनुदान टाङ्गा पिन्बाथेन होजा गेन्दुन दा 28 कोट नगरपालिका ग्याम मोटर ग्लुसी भ्रष्टाचार लाभा मराङबा मुला आयोग से पाङबा अनुसार केसी विरुद्ध लाक ब्रे चुई तोङ निचुई सोमसे सिका नाचुई गिक भ्रष्टाचार लाभा मुद्दा पिन्बा मुला स्यान शिवान मुभा सानगिर जिन्जी फ्याफुल्ला
1: वर्षा याम सँगै जंगल पाखा काठका ठुटा र खाली चौरहरूमा थरी थरीका च्याउ उम्रन्छन्।
2: केही च्याउ खान हुने, केही च्याउ खान नहुने विषालु हुन्छन्।
1: खान हुने र खान नहुने विषालु च्याउ चिन्न गाह्रो हुन्छ।
2: नचिनेको जंगली र जथाभावी उम्रेका च्याउ खानाले ज्यान समेत जान सक्छ।
1: होसियारी अपनाऊ, नचिनेको जंगली च्याउ नखाऊ।
3: लागु औषधको उत्पादन सञ्चय ओसार पसार बिक्री वितरण तथा सेवन कानुनतः दण्डनीय अपराध हुन्। यस्ता गतिविधिमा आफू पनि नलागौं र अरूलाई पनि लाग्न नदिऊ।
4: जनहितका लागि रेडियो नेपाल।
5: सार्वजनिक सेवा प्रसारण रेडियो नेपाल,
6: राष्ट्रिय रेडियो, राष्ट्रको संचार।
7: अहिले हामी सार्वजनिक सेवा प्रसारण रेडियो नेपालबाट बोलिरहेका छौँ। यो बागमती प्रादेशिक प्रसारण हो। अब हामी 5:45 हाराहारीसम्म यहाँहरूलाई विभिन्न लोक तथा दोहोरी गीतहरू सुनाउँदैछौँ। यस क्रममा पहिलो लोक दोहोरी गीत शान्तिश्री परियार, रोशन बिसी र साथीहरूको समूह स्वरमा, अनिल लम्साल र रोशन बिसीको युगल सङ्कलनमा, लय सङ्कलन सुदीप परियारको।

ई सार्वजनिक सेवा प्रसारण रेडियो नेपाल बर्दिवास्थिक विजय झासा सुनल जा मैथिली भाषामे समाचार। मिथिलाञ्चलमे नवविवाहित महिलाके आस्था, दाम्पत्य प्रेम र परम्परागत संस्कृतिके प्रतीक मनाओल जाला मधुश्रावणी पर्वके उल्लास अखन जनकपुरधाम सहित मधेशके विभिन्न जिल्लामे सहजे देखल जा रहल अछि। धार्मिक विश्वास आ संस्कृतिके महत्व रहल ई पर्व नवविवाहिता महिलाके उत्साह, समर्पण आ पारिवारिक सम्बन्धके थप प्रगाढ़ बनाबके अवसर प्रदान कयने अछि। बीतल सोम दिन साउन कृष्ण पंचमीसँ शुरू भेल ई पर्व साउन शुक्ल तृतीया धरि 13 दिन मनाओल जायत। विशेष कऽ विवाह पश्चात के पहिल वर्ष नवविवाहिता नैहरमे आबि कऽ ई मनेबाक परम्परा रहल अछि। पर्व के अवसर पर साउन महीना भरि भगवान शिव, माता पार्वती आ नाग देवता के पूजा आराधना करैत पति तथा दाम्पत्य जीवन के सुख, समृद्धि आ दीर्घायु के कामना करबाक चलन रहल अछि। मधुश्रावणी विशेष कऽ कऽ कायस्थ, मैथिल, ब्राह्मण आ ब्याहुत सोनार समुदायमे मनाओल जाइत अछि। पर्वमे विषहरा अर्थात नाग देवता के पूजा कऽ कऽ पति के दीर्घायु आ सुखमय जीवन के कामना करबाक परम्परा रहल अछि। सांसद सब खाना बनाबय वाला गैस के अभाव अंत करबाक लेल विद्युत नियमित आपूर्ति नियमित बनाबय लेल आ स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम के व्यवस्थित बनाबय सरकार के ध्यानाकर्षण करौलनि अछि। प्रतिनिधि सभा के आजुक बैठक के शून्य समय में सांसद वासना थापा जैलेक के पंचदेवल में रहल मंदिर, पंचकोशी लगाए तीर्थस्थल आ प्राकृतिक संपदा के प्रचार प्रसार करबाक लेल सरकार के ध्यानाकर्षण करौलनि। सांसद बीना गुरुंग कास्के जिला कारागार में रहल अभिभावक संग आश्रित बाल बालिका के उचित शिक्षा दीक्षा के प्रबंध दियाब सरकार संग मांग कलनि। सांसद बुद्धरत्न महर्जन 2081 आसिन में आयल बाढ़ से ललितपुर के कोंजियोसोम, बागमती आ महाकाल गांव पालिका के स्वयं नागरिक के घर दहोनी चर्च करत पीड़ित परिवार के शीघ्र राहत दक सुरक्षा आवास के व्यवस्था मिलेबा लेल सरकार के ध्यानाकर्षण करौलनि। सांसद भरत बहादुर खड़का सरकार आ नेपाल शिक्षक महासंघ बीच एहिसँ पहिने भेल सहमति कार्यान्वयन करबाक लेल सरकार संग मांग कलनि। सांसद भरत कुमार स्वर प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह सुदूर पश्चिम के सांसद

बुध दिन दिन के 1:15 में विश्वाक संघीय संसद सचिवालय जनौलक अछि। सचिवालय के महासचिव पद्म प्रसाद पांडे द्वारा जारी सूचना मार्फत बैठक के नया समय के संदर्भ में सांसद सब के जानकारी कराएल गेल अछि। कृषि वन तथा पर्यावरण मंत्री गीता चौधरी मानव वन्य जंतु बीच के सह अस्तित्व बचेबा लेल हाथी सैंचुरी कार्यक्रम संचालन कर लागल बतौलन अछि। आई पत्रकार सब संग बातचीत करैत ओ मानव के बाँचक अधिकार जेहनी वन्य जंतु के सेहो हेबाक चाही बतौलनि। हाथी सैंचुरी जेहने टाइगर सैंचुरी बनेबाक सोच में सरकार रहल बतबैत मंत्री चौधरी एहन कार्यक्रम सँ पर्यटन प्रवर्धन में महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह हाथ से विश्वास व्यक्त कलन। वो कहलन सरकार मानव वन्य जंतु बीच के द्वंद न्यूनीकरण के लिए विभिन्न कार्यक्रम आगू बढ़ौलक। मंत्री चौधरी अखन सरकार बीतल वर्ष में वन्य जंतु के आक्रमण में पड़ि के मृत्यु भेल तथा अंग भंग भेल के राहत देबाक काज कर रहल जानकारी दिलन। सरकार सुशासन प्रशासनिक सुधार तथा नीति कार्यान्वयन विकास आयोजना अनुगमन शिकायत व्यवस्थापन आ कानूनी प्रतिरक्षा लगायत के क्षेत्र में उल्लेख्य काज कलक। प्रधानमंत्री तथा मंत्री परिषद के कार्यालय आई सार्वजनिक कने 2083 बैसाख साखार धरि के प्रगति विवरण में 4 महीना में पूंजीगत दिस 68.26% आ चालू दिस 97.07% वित्तीय प्रगति हासिल भेल उल्लेख कार्यालय के प्रवक्ता हेमराज आर्याल जानकारी दिलन। हुनक हिसाबे अवधि में 21 मंत्री परिषद बैठक से 384 निर्णय भेल अछि। संगे मंत्री परिषद के विभिन्न समिति के 8 बैठक सम्पन्न भ 12 निर्णय भेल अछि। कार्यालय के हिसाबे जेएनजी आंदोलन पश्चात सेवा प्रवाह विकास निर्माण लगायत क्षेत्र में प्रभावकारिता अभिवृद्धि करबाक लेल सचिव स्तरीय बैठक मार्फत आवश्यक निर्देशन विचार विमर्श तथा अंतर्क्रिया कयल गेल अछि। अनियमितता आ ढीला सुस्ती हटाकर पारदर्शी निर्णय प्रक्रिया मार्फत सुशासन प्रवर्धन तथा भ्रष्टाचार नियंत्रण के लेल कार्यालय प्रमुख के थप जवाबदेही बनेबा लेल निर्देशन दिलक अछि। सरकार के 100 कार्यसूची के प्रभावकारी कार्यान्वयन के लेल विभिन्न मंत्रालय तथा निकाय संघ समन्वय साप्ताहिक प्रगति समीक्षा समय में कार्यान्वयन के लेल निर्देशन तथा सहजीकरण कयल गेल कार्यालय जनौलक अछि। बिरुजू फरचोट अनुगमन समिति के विभिन्न बैठक से तत्काल बिरुजू फरचोट के कार्रवाई करबाक लेल तथा वसूल पर करबाक बिरुजू के लगत राखब सब मंत्रालय तथा निकाय के निर्देशन देल गेल अछि। सार्वजनिक सेवा प्रसारण नेपाल के नवनियुक्त कार्यवाहक अध्यक्ष उर्वशी वसन्यात सिंह दरबार स्थित पीएसपी नेपाल के कार्यालय में पदभार ग्रहण कयलनि अछि। पीएसपी नेपाल के कार्यालय रेडियो नेपाल में कार्यवाहक अध्यक्ष वसन्यात के पीएसपी नेपाल के संचालक समिति सदस्य सुभिता रिसाल कायमुकायम प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत आरती चटौत लगायत पीएसपी नेपाल के पदाधिकारी सब स्वागत कयलनि। पदभार ग्रहण पश्चात कार्यवाहक अध्यक्ष वसन्यात सार्वजनिक सेवा प्रसारण नेपाल में सुशासन पारदर्शिता कायम करबाक संगे नागरिक प्रति उत्तरदायित्व प्रसारण के आगू बढ़ाल जेबाक विश्वास व्यक्त कयलनि। ओ चुनौती के बीच सेहो अवसर के उपयोग करैत सार्वजनिक सेवा प्रसारण रेडियो नेपाल आ नेपाल टेलीविजन के समाचार आ कार्यक्रम के विषय वस्तु तथा प्रविधि में महत्वपूर्ण सुधार करैत आगू बढ़बाक प्रतिबद्धता सेहो व्यक्त कयलनि। सार्वजनिक सेवा प्रसारण नेपाल के कायमुकायम प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत आरती चटौत संस्था के आंतरिक जटिलता के समाधान करैत पीएसबी राज्य नागरिक प्रति के जिम्मेवारी के पूरा करबाक स्पष्ट कलन। अखार 32 गति के सूचना तथा संचार मंत्री स्तरीय निर्णय से सार्वजनिक प्रसारण संस्था पीएसबी के संचालक समिति बैठक के अध्यक्षता करवासन सदस्य में नियुक्त वसनेत के काल्हिये से लागू होबासन कार्यवाहक अध्यक्ष के जिम्मेवारी देल गेल अछि। मध्य प्रदेश सरकार हरेक वर्ष बजट के आकार बढ़ावित गौरव की आयोजना आगू बढ़ाने बावजूदो बजट कार्यान्वयन में अपेक्षित सफलता हासिल कर नहीं सकल। मध्य सरकार के पिछला 5 वर्ष के खर्च विवरण प्रदेश के समग्र खर्च प्रगति में अधिकांश वर्ष 60% के हाराहारी में सीमित रहल तर्ष मात्र 71% पहुँचल देखौने के ऊपर पूंजीगत खर्च कमजोर रहबाक संगे आर्थिक वर्ष के अंतिम चौमासिक में अत्यधिक खर्च हो वाला प्रवृत्ति दोहरैला से बजट कार्यान्वयन के प्रभावकारिता वित्तीय अनुशासन पर प्रश्न सेहो उठल। आर्थिक वर्ष 2078 से 2082-83 धरि के तथ्यांक देखल गेला से प्रदेश सरकार के कुल बजट खर्च अधिकांश वर्ष 55-71% के सीमा में सीमित रहल। बजट विनियोजन बढ़त गेल बावजूदो खर्च के अनुपात में उल्लेखनीय सुधार नहीं अला से योजना निर्माण से कार्यान्वयन पक्ष कमजोर रहल संकेत
कैलन अछि। प्रदेश लेखा नियंत्रण कार्यालय मध्य प्रदेश के बीतल 5 वर्ष के तथ्यांक देखला सँ प्रदेश सरकार के खर्च विवरण, प्रदेश सरकार के बजट कार्यान्वयन क्षमता आर चुनौतीपूर्ण अवस्था

में रहल देखौने त बजेट बढ़ल बावजूदो कार्यान्वयन कमजोर देखल गेल छ। पर्सा के वीरगंज वार्ड नंबर 14 स्थित एक पेट्रोल पंप में हवाई ईंधन लेने टैंकर से तेल चोरी केने आरोप में प्रहरी 7 गोटे के पकड़लक। जिला प्रहरी कार्यालय पर्सा के प्रवक्ता एवं सूचना अधिकारी प्रहरी नायब उपरीक्षक चक्र बहादुर मल के हिसाबे विशेष सूचना के आधार पर वीरगंज महानगर पालिका वार्ड नंबर 14 स्थित सौदागर आयल में छापा मारल गेल छल। छापा मारल गेला पर ना 7 ख 1539 नंबर के हवाई ईंधन लेने टैंकर से गैलन में तेल भरित अवस्था में ओकरा सबके पकड़ल गेल प्रहरी जनौलक। चोरी तथा बिक्री वितरण में संलग्न रहल आरोप में पेट्रोल पंप के संचालक आ कर्मचारी सहित 7 गोटा के पकड़ने प्रहरी नायब परीक्षक मल जानकारी दिलन। मध्य प्रदेश के विभिन्न जिला में ट्रांसफार्मर चोरी के घटना बढ़त गए। बीतल 5 वर्ष में 99 ट्रांसफार्मर चोरी भेल। नेपाल विद्युत प्राधिकरण मध्य प्रदेश कार्यालय जनकपुर धाम के प्रशासन प्रमुख कालीचरण यादव जानकारी दिलने वो ट्रांसफीटर भीतर उपयोग हो वाला ताम के तार महग दाम में बिक्री भेला कारणे चोरी के घटना बढ़ल बतौलन। महतौरी से 35 बारा से 15 धौसा से 14 रौथट से 10 सरलाही आ सीधा से 9 सप्तरी में 3 परसा में 2 ट्रांसफार्मर चोरी भेल। चोरी भेल ट्रांसफार्मर के क्षमता 15 KV से लगकर 200 KV धर रहा है। ट्रांसफार्मर चोरी से किसान के प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ल समय अखन धान रोपा के समय में सिंचाई करण नहीं पौने वो सब से प्रभावित भेल। कृषक दोषी के शीघ्र पकड़ाऊ कर नया ट्रांसफार्मर जरान करवाक लेल संबंधित निकाय संघ मांग कयने। मध्य प्रदेश प्रहरी कार्यालय जनकपुर धाम के प्रहरी नया महानिरीक्षक ओम प्रसाद अधिकारी चोरी भेल ट्रांसफार्मर के खोजी कार्य भ रहल बतौलने। आब मौसम समाचार। देश भर मानसून वायु के प्रभाव कायम रहला से आज सेहो अधिकांश स्थान में वर्षा के संभावना है। जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखा के हिसाबे एखन मानसून की न्यूनचापीय रेखा पूर्वी क्षेत्र में सरदर स्थान के लगपास तथा पश्चिमी क्षेत्र में सरदर स्थान से किछ उत्तर दिश रहल है। अखन बागमती गंडकी आ सुदूरपश्चिम प्रदेश के संगे कोसी लुमनी आ कर्णाली प्रदेश के पहाड़ी भाग में साधारणता बदली भेल। मध्य प्रदेश तथा कोसी आ लुमनी प्रदेश के तराई भेग में आंशिक बदली भेल। बागमती आ कर्णाली प्रदेश के किछ तथा कोसी बागमती लुमनी आ सुदूरपश्चिम प्रदेश के 1-2 स्थान में हल्का वर्षा भ रहा है। अहिना राति में देशे भर साधारणता बदली रहत। कोसी बागमती गंडकी लुमनी कर्णाली आ सुदूर पश्चिम प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्र में किछ स्थान में मध्यम वर्षा के संभावना है। संगे हिमालय भाग के किछ स्थान में वर्षा हिमपात भ सकबाक महाशाखा जनौलक। तराई के किछ स्थान में मध्यम वर्षा के संभावना रहल। सार्वजनिक सेवा प्रसारण रेडियो नेपाल बर्दीवास से सुन रहल मैथिली भाषा में समाचार पूरा भेल।

ये रेडियो नेपाल है। अब मुकेश कुमार मिश्र से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। प्रतिनिधि सभा की बैठक में सांसदों ने खाना पकाने वाली गैस की सहज आपूर्ति, कृषि उर्वरक तथा उपभोग्य वस्तुओं की कृत्रिम कमी रोकने के लिए प्रभावी बाजार निगरानी की मांग करते हुए सरकार का कराया ध्यान आकर्षण, आपूर्ति व्यवस्था को और अधिक व्यवस्थित बनाने के लिए सरकार निरंतर प्रयासरत है, आपूर्ति मंत्री गौरी कुमारी का कथन, रूपंदेही की रोहिणी गांव पालिका में 273 भूमिहीन परिवारों को लाल पुर्जा वितरित, और भारत के असम में भीषण बाढ़ से जनजीवन अस्त व्यस्त, कम से कम 97 लोगों की हुई मृत्यु। अब समाचार विस्तार से। प्रतिनिधि सभा की आज की बैठक में 4 विधेयक पेश किए गए। कानून मंत्री सुविता गौतम ने संवैधानिक निकायों के पदाधिकारियों के पारिश्रमिक सेवा शर्त एवं सुविधा प्रथम संशोधन विधेयक 2083, परराष्ट्र मंत्री शिशिर खनाल ने पासपोर्ट संबंधी प्रथम संशोधन विधेयक 2083, उद्योग मंत्री गौरी कुमारी ने खानी तथा खनिज पदार्थ विधेयक 2083 और महिला बाल बालिका तथा सामाजिक सुरक्षा मंत्री सीता वादी ने मानव तस्करी तथा ओसार पसार नियंत्रण प्रथम संशोधन विधेयक 2083 पेश किया। बैठक में सांसदों ने प्राकृतिक आपदा, पहाड़ी जिलों में सड़क अवरोध, रसोई गैस और रासायनिक उर्वरक की आपूर्ति, सर्पदंश उपचार, सहकारी पीड़ितों को राहत, दूरसंचार सेवा सुधार और अन्य जन सरोकार के मुद्दों पर सरकार का ध्यान आकृष्ट किया। बैठक की शुरुआत में विपक्षी सांसदों ने प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह के सीमा संबंधी बयान को वापस लेने की मांग करते हुए विरोध किया। सभामुख ने इस विषय पर सरकार से जवाब देने का निर्देश दिया। प्रतिनिधि सभा की अगली बैठक श्रावण 25 कृति सोमवार को दोपहर 1 बजे के लिए बुलाई गई है। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मंत्री गौरी कुमारी यादव ने कहा है कि पहले की तरह ही LPG का आयात जारी है, लेकिन वितरण प्रणाली में बदलाव के कारण कुछ असंतुलन देखा गया है। प्रतिनिधि सभा में सांसदों के प्रश्नों का उत्तर देते हुए उन्होंने कहा कि श्रावण महीने से भरे हुए सिलेंडरों के वितरण की व्यवस्था शुरू होने के कारण कुछ अस्थायी समस्याएं उत्पन्न हुई हैं। मंत्री यादव ने बताया कि देश की आंतरिक मांग के अनुरूप गैस का आयात हो रहा है, लेकिन उपभोक्ताओं द्वारा एक साथ अधिक मात्रा में गैस की मांग किए जाने से बाजार में दबाव बढ़ा है। उन्होंने सदन को जानकारी दी कि नेपाल में वर्तमान में 58 LPG गैस उद्योग संचालित हैं, जिनकी कुल भंडारण क्षमता 10,166 मीट्रिक टन है। साथ ही बाजार में लगभग 1.75 करोड़ गैस सिलेंडरों को भरने की क्षमता उपलब्ध है और सरकार आपूर्ति व्यवस्था को और अधिक व्यवस्थित बनाने के लिए प्रयासरत है। रूपंदेही जिले के रोहिणी गांव पालिका में 273 भूमिहीन परिवारों को भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र यानी लाल पुर्जा वितरित किए गए। भौतिक पूर्वाधार विकास मंत्री सुनील लम्साल ने प्रमाण पत्र वितरित करते हुए कहा कि अव्यवस्थित बसोबास और भूमिहीनों की समस्या के स्थायी समाधान के लिए दीर्घकालीन योजना तैयार की जा रही है। उन्होंने स्थानीय जनप्रतिनिधियों और कर्मचारियों को मुख्य जिला अधिकारी के साथ समन्वय कर शेष भूमिहीनों की समस्या का शीघ्र समाधान करने के निर्देश दिए। सूचना तथा संचार मंत्रालय ने मीडिया काउंसिल विधेयक 2083 के मसौदे पर संचार क्षेत्र के हितधारकों के साथ चर्चा कर सुझाव एकत्र करना शुरू किया है। मंत्रालय में आयोजित बैठक में विभिन्न मीडिया संस्थानों के संपादकों और प्रतिनिधियों, नेपाल पत्रकार महासंघ, प्रेस काउंसिल तथा पत्रकारिता से जुड़े स्वतंत्र संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। बैठक में विधेयक में शामिल किए जाने वाले प्रावधानों, वर्तमान मीडिया क्षेत्र की चुनौतियों और नियामकीय व्यवस्था पर विस्तृत सुझाव लिए गए। सूचना तथा संचार मंत्री डॉ. विक्रम तिमिल सिन्हा ने कहा कि हितधारकों से प्राप्त सुझावों के आधार पर एक प्रभावी, व्यावहारिक और भविष्य उन्मुख विधेयक तैयार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार प्रेस और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है तथा प्रेस की स्वतंत्रता के बिना लोकतंत्र को मजबूत नहीं किया जा सकता। नेपाल दूरसंचार प्राधिकरण ने मोबाइल सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार, उपभोक्ता हितों की सुरक्षा और दूरसंचार सेवाओं की पहुंच बढ़ाने को प्राथमिकता देते हुए मोबाइल सेवा प्रदाता कंपनियों को विभिन्न निर्देश जारी किए हैं। प्राधिकरण ने कहा कि ये निर्देश मोबाइल सेवा गुणवत्ता क्वालिटी ऑफ सर्विस QoS, रेडियो फ्रिक्वेंसी स्पेक्ट्रम के प्रभावी उपयोग, लाइसेंस की शर्तों के पालन और उपभोक्ता हितों की बेहतर सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जारी किए गए हैं। इसके साथ ही जिन क्षेत्रों में मोबाइल सेवा उपलब्ध नहीं है या सेवा की गुणवत्ता कमजोर है, उनकी पहचान कर प्राथमिकता के आधार पर नेटवर्क विस्तार करने के भी निर्देश
दिए गए हैं। समाचार आप रेडियो नेपाल से सुन रहे हैं। बस थोड़ी देर

0: नेपाल टेलिकॉम राष्ट्रको संचार।
1: अब बाकी समाचार। परराष्ट्र मंत्री शिशिर खनाल ने कहा है कि देश की विदेश नीति का मुख्य केंद्र आर्थिक कूटनीति है। ललितपुर में आयोजित बहुध्रुवीय विश्व में चीन और दक्षिण एशिया विकसित क्षेत्रीय व्यवस्था में चीन भारत नेपाल त्रिपक्षीय संबंध विषयक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आर्थिक कूटनीति का उद्देश्य नेपाली नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार लाना तथा व्यापार, निवेश, रोजगार, उद्यमिता, पर्यटन, प्रविधि, नवाचार और सतत विकास के अवसरों का विस्तार करना है। उन्होंने कहा कि नेपाल, चीन और दक्षिण एशिया के बीच आर्थिक, व्यापारिक और जनस्तरीय सहयोग बढ़ाने में एक गतिशील सेतु की भूमिका निभा सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि नेपाल अपने दोनों पड़ोसी देशों के साथ संप्रभु समानता, पारस्परिक सम्मान, साझा हितों और एक दूसरे की संवेदनशीलताओं को लेकर प्रतिबद्ध है। सरकार ने हर साल बढ़ रही बिजली की मांग को देखते हुए ट्रांसमिशन लाइन विस्तार को प्राथमिकता देने का निर्णय किया है। प्रतिनिधि सभा की पूर्वाधार विकास समिति की बैठक में ऊर्जा मंत्री विराज भक्त श्रेष्ठ ने कहा कि पुराने ट्रांसमिशन नेटवर्क के कारण मांग के अनुरूप बिजली आपूर्ति प्रभावित हुई है। उन्होंने बताया कि इस वर्ष सरकार नई विद्युत परियोजनाएं शुरू नहीं करेगी, बल्कि अधूरी और जर्जर परियोजनाओं को पूरा करने पर ध्यान देगी। ऊर्जा मंत्री ने कहा कि कर्णाली और सुदूर पश्चिम के बिजली विहीन क्षेत्रों में वैकल्पिक ऊर्जा पहुंचाने की योजना बनाई गई है। बैठक में सांसदों ने जर्जर बिजली के तारों, बढ़ते लोड शेडिंग के निराकरण और समन्वित पूर्वाधार योजना की आवश्यकता पर जोर दिया। सार्वजनिक सेवा प्रसारण पीएसपी नेपाल की नवनियुक्त कार्यवाहक अध्यक्ष उर्वशी बस्न्यात ने सिंहदरबार स्थित पीएसपी नेपाल कार्यालय में पदभार ग्रहण किया। मौके पर पीएसपी नेपाल की संचालक समिति सदस्य सोभिता रिसाल, कार्यवाहक प्रमुख प्रशासनिक अधिकृत आरती चटौत सहित अन्य अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। पदभार ग्रहण करने के बाद बस्न्यात ने सुशासन, पारदर्शिता और नागरिकों के प्रति जवाबदेह सार्वजनिक प्रसारण को आगे बढ़ाने की प्रतिबद्धता जताई। कार्यवाहक प्रमुख प्रशासनिक अधिकृत आरती चटौत ने कहा कि संस्थान की आंतरिक चुनौतियों का समाधान करते हुए पीएसपी नेपाल राज्य और नागरिकों के प्रति अपनी जिम्मेदारियों का प्रभावी ढंग से निर्वहन करेगा। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। भारत के पूर्वोत्तर राज्य असम में भीषण बाढ़ और लगातार बारिश से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। राज्य में बाढ़ से मृतकों की संख्या बढ़कर 97 हो गई है, जबकि 15 जिलों के 168,000 से अधिक लोग प्रभावित हैं। 481 से ज्यादा गांव अब भी जलमग्न हैं और हजारों लोगों ने राहत शिविरों में शरण ली है। सरकार ने बताया है कि बाढ़ का कारण ऊपरी जलग्रहण क्षेत्रों में हुई भारी वर्षा है, न कि भूटान के बांधों से पानी का छोड़ा जाना। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सेना और प्रशासन राहत एवं बचाव कार्य में जुटे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सरमा ने प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर राहत कार्यों की समीक्षा की है, जबकि झारखंड सरकार ने राहत कार्यों के लिए 3 करोड़ रुपए की सहायता देने की घोषणा की है। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 29 से 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 20 से 22 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 20.5 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रतिनिधि सभा की बैठक में सांसदों ने खाना पकाने वाली गैस की सहज आपूर्ति, कृषि उर्वरक तथा उपभोग्य वस्तुओं की कृत्रिम कमी रोकने के लिए प्रभावी बाजार निगरानी की मांग करते हुए सरकार का कराया ध्यानाकर्षण, आपूर्ति व्यवस्था को और अधिक व्यवस्थित बनाने के लिए सरकार निरंतर प्रयासरत है आपूर्ति मंत्री गौरी कुमारी का कथन, रूपनदेही की रोहिणी गांव पालिका में 273 भूमिहीन परिवारों को लाल पुर्जा वितरित और भारत के असम में भीषण बाढ़ से जनजीवन अस्त व्यस्त, कम से कम 97 लोगों की हुई मृत्यु। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभरात्रि।
2: सादा खाना 100 रुपियाँ, मटन खाना 200 रुपियाँ। ओए, मोबाइलको डाटा पनि हामीले चलाएको मेनु अनुसार महँगो र सस्तो पर्नु पर्ने होइन र?
3: हुन्छ नि मित्र, फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, भाइबर, व्हाट्सएप जस्ता सामाजिक सञ्जालहरू मात्रै चलाउने हो भने नेपाल टेलिकममा असाध्यै सस्तो मूल्यमा